0: 99.9
1: दोस्तों, लोकगीत खुशी गमी जिंदगी दे हर पहलू दे साडे नाल ते साडे नाल ही रहना। जिंदगी च आपां टप्पे सुहाग होर जिंदगी नाल किन्नियां रस्मां साडे जुड़ियां आ, सारियां लोक संगीत दे विच साढ़े नाल जुड़िया हैं। तो लोक संगीत नूं सुनो ना, सिर्फ सुनिए ना, इनू महसूस भी करिए। इहदे विच साढ़े बड़ियां दीआं दुआवां भी आ, पिंड दी मिट्टी की खुशबू भी आ, अपनी माँ की लोहरी भी आ, अपने पिता की मेहनत भी आ, अपने पंजाब की रूह भी आ। जो तक पंजाबी लोक संगीत जिउंदा है तो उदों तक पंजाब की रूह भी जिउंदी रहिंदी है। मैं हाँ तुहाडा मेजबान श्याम कुमार, तुसीं सुन रहे सी साडा विशेष प्रोग्राम पंजाबी लोक संगीत दी महक। चलो अगले हफ्ते फिर मिलांगे किसे नवीआं गल्लां, अपनी विरासत नाल इक जुड़ी हुई एक होर कहानी। तद तक लई रब रखा, सुरां दी मिठास अते पंजाब दी मिट्टी वर्गी महक बनाई रखना, जिंदगी विच खुशियां हमेशा ही बनाई रखा।